Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो, ना आशा करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा. इट वॉज का डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्राम्स वी हेड. और आज हमारे जो गेस्ट थे, फिर से हम शुक्रिया करना चाहेंगे वारिस राजपूत, किरत सिंह और लियाम ओलिफा. समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू फॉर क्राइस्टचर्च. और अभी हम जो देख रहे हैं, इट्स बाउंड टू ग्रो एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, कीप गोइंग. और अभी हम जब गीत सुने थे, इन द बैकग्राउंड वी आर टॉकिंग टू देम, एंड हम ये भी बात कर रहे थे कि देर एक्चुअली क्लासेस फॉर इज वेल. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, या आपके पास बच्चे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न those instruments or something, do contact us and we will refer you to the team. Then that way you can contact them. Aur agar aap seekh bhi sakte ho, agar aap chahte ho, I know many people are interested. Aur kafi log ye bhi hai ki Punjab se aaye hue ya to fir India mein kahin se bhi aap aate ho, Fiji se bhi aate hain, and they want to learn those things. Ya interest hoga agar aapko music, then do contact us. To chalo, aaj hum aaj ka program hum yahi khatam karte hain. Shukriya, alvida karte hain. Aur is vaade ke sath, jise hum hamesha bolte hain ki hum jud jayenge next Saturday isi samay 5 p.m. to 6 p.m. और इन द मीन टाइम एंजॉय कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए. एंड वीडियो में हम कभी कभार आपको मिलते रहेंगे व्हेन वी हैव सम इंपॉर्टेंट न्यूज, समाचार या कुछ आप से शेयर करने के लिए हमारे पास कुछ होता है. वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले एंड समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ.